0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: You want to mess with someone जो आपको देर तक सुबह सोने नहीं देता? I will tell you how. So my last relationship में my then boyfriend and I went out for a vacation and that's when I realized कि यार जहाँ मैं 9:30 बजे उठती हूँ ये बंदा 6:30 बजे उठ जाता है और क्योंकि वेकेशन कर रहे हैं एक ही कमरा है तो वो उस कमरे में कभी जाकर चाय बना रहा है गर्म पानी अपने ऊपर उडेल रहा है फॉर सम रीजन बिकॉज इज अ क्लट्स लाइक दैट या फिर वो जनरली अपने फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रहा है जिससे मैं जाग जाती थी तो पहले 2 दिन ऑफ दिस वेकेशन आई लेट हिम रूइन माई स्लीप एंड देन आई रियलाइज कि इट इज़ टाइम फॉर रोशी का द रिवेंज यार And that's when तीसरे सुबह अब ये 6:30 बजे उठते हैं जनाब 6:30 बजे तक घोड़े बेच कर सो रहा था ये बंदा बट आई वोक हिम अप एट 6:00 एंड यू से क्या हो गया क्या हो गया एंड आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं मैं बस बोल रही थी कि 6:30 बजे तेरी नींद खुल जाती है ना तो 6 बजे

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम मुझे
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहां रहा है
3: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूं मतलब नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करिए मैं पहले इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि बेबी इट्स आवर सेकंड डेट, हम सिर्फ एक पिक्चर देखने जाएंगे, उसके बाद कॉफ़ी वॉफी ये वो, बट मन में आपके गंदे विचार थे कि सिनेमा हॉल में पिक्चर कौन देखता है यार. सिनेमा हॉल में जो आपके गंदे विचार चल रहे थे ना, यू वॉन्ट टू कन्फेस अबाउट दैट. नाउ इज द टाइम एंड दिस इज अ प्लेस टू डू इट, क्योंकि
3: द सीक्रेट बॉक्स,
2: जैसे ये लेडीज बोलती है ना सीक्रेट, मेरे अंदर ऐसे मन करता है कि मैं एक दो कन्फेशन अपने लिए बना लूँ, बिकॉज इट्स लाइक सो एक्साइटिंग. हाउएवर, अगर आपके पास है कोई कन्फेशन, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी.
2: क्या हो गया मिस्ट्री कॉलर, आप इतने दुख में क्यों लग रहे हो?
4: नहीं नहीं, मतलब मेरे पास एक सिली सी कन्फेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी.
2: हाँ हाँ प्लीज बताइए. आपने आपकी जो टोन है ना, उसी टोन से आपने मुझे अपना इंस्टाग्राम का मैसेज भी लिख के भेजा था. हाय रोशी, मैं थोड़ी सी ना शर्मा रही हूँ, पर ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता ही दो फाइनली.
4: ओके रोशी, तो यू नो मेरी ना बहुत पहले से ना फेवरेट मूवी है हम दिल दे चुके सना.
2: अच्छा
4: ठीक है. और मैंने ना 10th में वो पहली बार देखी, एंड उसे देखते ही मतलब मुझे ऐश्वर्या से प्यार हो गया था, मुझे सलमान से प्यार हो गया था, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी. ठीक है. एंड तब भी मैंने देखी एंड मैंने सोच लिया भाई अब तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है बिल्कुल सलमान जैसा ही. और मुझे भी ना ऐसे आंखों की गुस्ताखियां करनी है उसके साथ, तो मुझे ऐसे करना और ऐसे नटखट नौटी सा प्यार मुझे चाहिए. तो मैंने तो बना लिया बॉयफ्रेंड. ठीक है, जैसे जैसे करके. बट गेस करो रोशी, मैंने उसको कॉलेज 3rd year तक ये आकर मैंने उसे किस नहीं किया.
2: 3rd year तक आके भी आप उसे बॉयफ्रेंड बनाया कब था? कॉलेज के 1st year में?
4: 10th में मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनाया, और कॉलेज के 3rd year तक भी मैंने उसे किस नहीं किया.
2: क्यों किस नहीं किया आपने सलमान खान को अपने?
4: मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. उसमें दिखाया था ना, तो उसको देख के ही, और ऐश्वर्या राय ऐसे कर रही है और एकदम वो डर गई थी, तो उसको देख के मैंने ना सच मान लिया, और मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. और मैंने 3rd year तक, सोच लो इतने लंबे टाइम तक मैंने किस ही नहीं किया अपने बॉयफ्रेंड को.
2: वो सब छोड़ भी मैं ये

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आज मैं आपको एक पाथ ब्रेकिंग फर्स्ट डेट का आइडिया देने वाली हूँ, इन केस इट इज अ डेट दैट डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. आपका बंदा या बंदी सही नहीं निकले, देन हाउ डू यू कंडक्ट द रेस्ट ऑफ योर फर्स्ट डेट. आप उन्हें एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में लेकर जाओ और वहीं छोड़ दो. That is the idea of an ideal first date which has gone wrong for you. अगर आपके पास इससे बेहतर ideas हैं, why don't you hit me up? मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपकी बातें, of course. और जाऊंगी मैं कहाँ? नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की spelling है ROCHIE. So find me on your socials and while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये लो समोसा खा लो, तुम्हारे लिए लाए हैं और उसमें स्पेशल चटनी भी लगवा कर लाए हैं, तुमको बहुत पसंद है ना, और साथ में आलू की चाट भी लाए हैं अगर तुम्हारा समोसे से पेट ना भरे। अब इमेजिन करो, छोटी सी बात, समोसे की कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका बॉयफ्रेंड या क्रश या जो भी बाहर गया और जब वो समोसा खा रहा था उसने आपके बारे में सोचा और आपके लिए समोसा लेकर आया, इट मेक्स यू फील सो स्पेशल, राइट? और ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था विद नॉट अ बॉयफ्रेंड, एक्चुअली अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। जब भी वो कहीं बाहर कुछ खाने जाता था ना, वो हमेशा मेरे लिए अगर कुछ यमी होता था पैक करा कर ले आता था। इट वॉज अ स्लाइस ऑफ केक, कई बार समोसा, कई बार ब्रेड पकौड़ा, और मैं ब्रेड पकौड़ा खाती भी नहीं हूँ, बट वो इतने प्यार से लाता था दैट आई यूज टू एंड अप ईटिंग एवरीथिंग जो वो मेरे लिए लेकर आता था। एंड प्रॉबेबली दैट्स द रीजन वाई हमारी दोस्ती अब 10 साल पुरानी है, बिकॉज जब भी हम कभी बाहर जाते हैं हम एक दूसरे के लिए एक छोटा सा सुवेनर जरूर लेकर आते हैं, जस्ट टू टेल दी अदर पर्सन दैट यू वर ऑन माई माइंड इवन जब मैं तुमसे दूर थी। तो इमेजिन अगर आप एक रिलेशनशिप में ऐसा करोगे, कितना एक्सपोनेंशियली एलिवेट हो जाएगा आपका सीमेंटिंग रोमांटिक रिलेशनशिप। और इसके लिए थैंक यू आप किसको बोलोगे? मौसी जी, मुझे हिट अप करने के लिए यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, बेबी सीमेंट योर रिलेशनशिप, टेल मी यू लव मी, एंड कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारू और सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
2: वही आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी।
2: I'm sorry, नवे, I'm sorry।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब आपको ये लगता है ना दैट अगर आपकी जिंदगी में कोई भसड़ है एंड यू कैन रीच आउट टू मी, आई थिंक दैट इज अ मोमेंट दैट रिमाइंड्स मी कि मैं ये काम क्यों करती हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि यू नो इट्स लाइक अ रियली सेलिब्रिटी जॉब एंड स्टफ, बट बिकॉज आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है या बीटी चल रही है, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर संकेत है. आई थिंक संकेत और मेरी पहले भी बात हुई है. हाय संकेत.
3: यस, हमारी पहले भी एक दो बार बात हो चुकी है.
2: है ना, तो अभी क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
3: कुछ मेरी गलतियाँ थी. मतलब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हो तो वो भी आपको बहुत सोच समझ के रखना चाहिए. एक छोटे से स्टेटस पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर वो इतनी बड़ी हो गई कि इतने झगड़े होने लगे कि हमारी बात भी नहीं होने लगी.
2: तो आप एक रिलेशनशिप में थे या वर यू गाइज लाइक यू नो अभी मतलब
3: हम रिलेशनशिप में थे या नहीं थे वो नॉट श्योर. शायद मैं उस फेज में था जहाँ से हम रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते थे. 24 आवर्स में से हम दोनों ऑफिस टाइम छोड़ के कम से कम 6 या 7 घंटे कॉल्स पे रहते थे. उसके बाद में फिर वो भसड़ हो गया, सब कुछ झगड़ा वगैरह, एंड देन फिर बातें कम होने लगी. फिर आपको होता है ना एक फिर जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो होने लगी. लाइक मैं और गुस्से से बात करने लगा. रिग्रेट मुझे होता था बाद में, मैं ही रो रहा हूँ फिर उसी चीज को लेकर. बट फिर वो चीजें इतनी बिगड़ती चली गई. अब हम रेयरली बात कर रहे हैं, एकदम रेयरली.
2: यार यू नो अक्सर क्या होता है एक रिलेशनशिप में हम जब इस स्टेज पे आ जाते हैं ना कि चीजें इतनी खराब हो जाती है दैट सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे नाराज नहीं है लेकिन इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा है कि नहीं. उस स्टेज पर जाके ना चीजें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता है. संकेत, तुझे ये याद है कि वो किस किस रीजंस की वजह से अट्रैक्टेड हुई थी टू यू?
3: चीज तो सिंपल वही थी, मैं उसको हर बार सपोर्ट करता था बिकॉज वो उस टाइम बहुत डिप्रेस थी उसके पास को लेकर. मैं उसको सिर्फ मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा था. मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अटैच हो जाऊंगा कभी. उसको अटैचमेंट हुई लेकिन उस टाइम मैंने ज्यादा सीरियस लिया नहीं. जब मुझे समझ में आया कि मुझे खुद अटैचमेंट हो रही है, जब मैं मिलने गया तब तक शायद उसका मन थोड़ा कम हो गया था. और फिर ये झगड़ा, जो मेरा ड्रीम जॉब था वो मुझे मिल रहा है. नेक्स्ट मंथ मैं ऑस्टिन जा रहा हूँ, मुझे ऑस्टिन का ऑफर मिला है. मैं उस बंदी को सिर्फ टेक्स्ट पे बताया कि आई गॉट सिलेक्टेड, मुझे ऑस्टिन का ऑफर है. उस बंदी ने मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट किया, कांग्रेचुलेशन.
2: संकेत देख, तू अगले महीने ऑस्टिन जा रहा है, करेक्ट? एंड यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग व्हाइल.
3: मेरे दिमाग में इंडिया वापस आने का प्लान ही नहीं है अभी.
2: बट यू नो संकेत, छोड़ दे इसे, क्योंकि प्यार का ना एक कंडीशन, मेरे हिसाब से प्यार की एक ही कंडीशन होती है कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, सामने वाला आपसे उतना प्यार ना करे ठीक है, लेकिन आपकी इज्जत करे और आपको वापस प्यार करे. जैसे एक पिक्चर है हमें बहुत पसंद है लेकिन वो पिक्चर 3 घंटे में खत्म हो जाती है.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अगर यही क्रिएटिविटी मेरे एक्स ने ड्यूरिंग द रिलेशनशिप दिखा दी होती तो शायद मैं उसे इतनी जल्दी डंप नहीं करती. ही रिसेंटली सेंट मी अ मैसेज सेइंग, रोशी एक ऑक्टोपस के तो तीन तीन दिल होते हैं और तेरा तो एक भी नहीं है. अगर होता तो तू मुझे एक चांस और दे देती. एंड ऑनेस्टली मैं उसे चांस तो नहीं दूंगी लेकिन उसकी क्रिएटिविटी की दाद जरूर दूंगी. लेकिन आई थिंक ही स्टोल दिस जोक फ्रॉम समवेयर एल्स बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज दैट स्मार्ट टू थिंक लाइक दिस. क्योंकि अगर वो स्मार्ट होता तो उसने मुझे इतना इरिटेट नहीं किया होता दैट इट टुक मी टू अ प्लेस वेयर आई हैड टू डंप हिम. बट ये बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको किसी एक रीजन की वजह से इतना परेशान किया है दैट यू हैड नो ऑप्शन बट टू डंप हिम और हर. Whatever your reason was, let's compare notes, baby. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot. Hi.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप एक डेट पर हो और आपको बर्प आ रहा है और आप बर्प करने वाले हो बट यू थिंक टू योर

बियर, तो ऐसा हो ही जाता है कि पहले मतलब आधे घंटे में देर लाइक ओह हमारा पहला बर्प कमिंग अप, विच इज़ फाइन क्योंकि आपने चीज़ें ऐसी पी हैं या चीज़ें ऐसी खाई हैं वेयर यू फील द नीड टू बर्प. पहले तो ऑनेस्टली अगर पहली डेट है तो ऐसा मत करो ना, क्या ज़रूरी है, क्या ज़बरदस्ती है, घर जाके पी लेना बियर. लेकिन अगर आपको करना ही है बिकॉज यू आर द स्कूल गाय हु नीड्स टू डू दिस, देन बर्पिंग का भी एक फैशन होता है. कवर योर माउथ विद योर हैंड, जेंटली बर्प. और वो लोग ना जो ऐसे बर्प करके देर लाइक हे भगवान, दैट इज अ डेटिंग डिजास्टर. जो इंसान लड़का या लड़की बर्प करने के बाद ये मतलब इंटायर नैरेटिव कर रहे हैं, डंप कर दो उन्हें उसी टाइम और भाग जाओ वहाँ से. नहीं तो जिंदगी भर एवरी टाइम दैट पर्सन बर्प्स यू आर गोइंग टू हैव टू हियर दिस इंटायर अंकल जी आंटी जी वाली कॉन्वर्सेशन विद दम सेल्फ. उठाई ले भगवान यार, क्या खा लिया. यू डोंट वॉन्ट टू बी इन एनी डेटिंग सिचुएशन विद अ पर्सन लाइक दैट. ऑन दैट नोट, अगर आप फंस गए हो किसी के साथ जो 10 on 10 है, लेकिन वेन देयर बर्प

0: हेलो
1: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: कौन बोल रही हैं
0: आप? कौन बोल रही हैं?
2: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
0: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
2: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
0: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
2: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
0: ये तो वहाँ से मेरे पास,
2: अरे यार
0: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
2: हो सकता है, हो सकता है।
1: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
0: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा
2: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
0: है?
2: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
1: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
0: हेलो
2: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि बेबी इट्स आवर सेकंड डेट, हम सिर्फ एक पिक्चर देखने जाएंगे, उसके बाद कॉफ़ी वॉफी ये वो, बट मन में आपके गंदे विचार थे कि सिनेमा हॉल में पिक्चर कौन देखता है यार. सिनेमा हॉल में जो आपके गंदे विचार चल रहे थे ना, यू वांट टू कन्फेस अबाउट दैट. नाउ इज द टाइम एंड दिस इज अ प्लेस टू डू इट, क्योंकि
3: द सीक्रेट बॉक्स,
2: जैसे ये लेडीज बोलती है ना, सीक्रेट बॉक्स, मेरे अंदर ऐसे मन करता है कि मैं एक दो कन्फेशन अपने लिए बना लूँ, बिकॉज इट्स लाइक सो एक्साइटिंग. हाउएवर, अगर आपके पास है कोई कन्फेशन, मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल, कान मेरी जान, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी.
2: क्या हो गया मिस्ट्री कॉलर, आप इतने दुख में क्यों लग रहे हो?
4: नहीं मतलब मेरे पास एक सिली सी कन्फेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी.
2: हाँ हाँ, प्लीज बताइए. आपने आपकी जो टोन है ना, उसी टोन से आपने मुझे अपना इंस्टाग्राम का मैसेज भी लिख के भेजा था. हाय रोशी, मैं थोड़ी सी ना शर्मा रही हूँ, पर ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता ही दो फाइनली.
4: ओके रोशी, तो यू नो मेरी ना बहुत पहले से ना फेवरेट मूवी है हम दिल दे चुके सनम.
2: अच्छा,
4: ठीक है. और मैंने ना 10th में वो पहली बार देखी, एंड उसे देखते ही मतलब मुझे ऐश्वर्या से प्यार हो गया था, मुझे सलमान से प्यार हो गया था, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी. ठीक है, एंड तब भी मैंने देखी एंड मैंने सोच लिया भाई अब तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है बिल्कुल सलमान जैसा ही, और मुझे भी ना ऐसे आंखों की गुस्ताखियां करनी है उसके साथ, तो मुझे ऐसे करना, और ऐसे नटखट नौटी सा प्यार मुझे चाहिए. तो मैंने तो बना लिया बॉयफ्रेंड, ठीक है, जैसे ऐसे करके. बट गेस करो, गेस करो रोशी, मैंने उसको कॉलेज 3rd year तक ये आकर मैंने उसे किस नहीं किया.
2: 3rd year तक आके भी आप उसे बॉयफ्रेंड बनाया कब था? कॉलेज के 1st year में?
4: 10th में मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनाया, कॉलेज के 3rd year तक भी मैंने उसे किस नहीं किया.
2: क्यों किस नहीं किया आपने सलमान खान को अपने?
4: मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. उसमें तो उसको देख के ही, और ऐश्वर्या राय ऐसे कर रही है और एकदम वो डर गई थी, तो उसको देख के मैंने ना सच मान लिया, और मुझे लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं. और मैंने 3rd year तक, सोचो इतने लंबे टाइम तक मैंने किस ही नहीं किया अपने बॉयफ्रेंड को.
2: वो सब छोड़ भी, मैं ये सोचू कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे कितना सच्चा प्यार करता होगा कि 10th standard से लेके 3rd year of college तक वो कह रहा है हाथ पकड़ के काम चला लूंगा. ये अगर ऐश्वर्या राय तक कैसे भी करके खबर पहुंच जाए, आई थिंक शी ओज यू एन अपॉलॉजी. इनफैक्ट आई थिंक संजय लीला भंसाली ओज यू एन अपॉलॉजी. तो आई होप कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को उसके बाद कॉम्पनसेट करने के लिए इनफ एंड मोर कॉम्पनसेटरी केसेस कर दी हूँ.
4: बस पूछो मत, अब तो बहुत सारी नॉटी नॉटी चीजें कर ली मैंने.
2: मैं जानना नहीं चाहती आपकी नॉटी नॉटी, आप बस रोशिफिकेशन ले लो.
0: You've been roshified.
2: एंटू गटलेट लगते हो आप, है ना?
4: थैंक यू.
2: हाँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी योर स्टोरी. आई मीन, काश मैं आपकी नॉटी नॉटी बातें भी सुन सकती होती, बट मेरे कान ना और झेल नहीं पाएंगे. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई नोटी कन्फेशन है, हिट मी अप नोटी पर्सन इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Authentic, original, and better than our rivals.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: दुनिया में बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जहां आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से नाराज हैं। इट्स जस्ट दैट आप एक दूसरे के साथ बैठकर साइलेंस शेयर कर सकते हैं। आपके मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई एंगर नहीं है, बस एक बहुत ही काम, सूदिंग, पीसफुल फीलिंग है। और आपके साथ जो बैठा हुआ है इंसान, वो भी आपके साथ बस ऐसा ही महसूस कर रहा है, और आप दोनों बस एक दूसरे के साथ बैठे बैठे सनसेट की तरफ देख रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप दोनों लवर्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सोलमेट्स हैं। इट कुड बी जस्ट टू रैंडम पीपल शेयरिंग अ साइलेंस टुगेदर। लेकिन वो फीलिंग ना, किसी के साथ साइलेंस शेयर करने की, दुनिया की सबसे ज्यादा इंटीमेट फीलिंग है। और अगर आप लकी इनफ हो टू हैव एक्सपीरियंसेस विद समवन, आई रियली वांट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी। और तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कहानी आपको क्यों बताई। एंड टू टेल मी योर स्टोरी, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड ऑनेस्टली, जिसके पास लव है ना, उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे। हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी। लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं। और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है, we've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms, और फिर भी क्या हम वैसे cultural moments create कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं। मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली, एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म। ये तो हमने पहले भी देखा है।
4: नंबर 20।

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

0: एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग संग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज।
1: नंबर 18

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
1: बिल्कुल
2: मालूम
1: से, होना बिल्कुल
2: चाहिए।
1: सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा है, मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
1: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
1: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पटाक
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्लाह। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। Now Hardy Sandhu इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कट फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर।
1: नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

Radio Mitri New York. It's hot.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है, वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

अरे हम आए और आप चल दिए, ये क्या बात हुई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना, और मैं सोच रही थी कि इस तरह के कैसे नाम होते थे ना पुरानी फिल्मों के, आन मिलो सजना, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आप आए बहार आई।

0: धुरंधर
1: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। टाइम टाइम की बात होती है यार, उस टाइम वो चलता था, इस टाइम ये चल रहा है।
0: और आने जाने पे मुझे एक लाइन याद आई, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अभी मैं थोड़ी भीड़ कम करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ।
1: ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: सॉरी ना मैडम, सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
3: कुकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

एक ना पुराना गाना है जो जब भी किसी रेडियो स्टेशन पे चलता है तो वो रेडियो स्टेशन पे काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी घबराहट दे देता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हमारे ना क्या होता है कि रेडियो पे गाने चलते हैं, एड्स चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जहां पे कुछ साइलेंस आ जाती है ना, एकदम सन्नाटा कुछ हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेड एयर, जो नहीं होनी चाहिए। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ ना, रजिया सुल्तान का ए दिले नादान, उसमें टुवर्ड्स एंड जहाँ पे लिरिक्स आते हैं, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, उसके बाद 4-5 सेकंड का ऐसे पॉज है, साइलेंस, फिर वहां से गाना पिक करता है, ये जमीन चुप है, आसमान चुप है। तो उन लिरिक्स को वजन देने के लिए वो साइलेंस, वो पॉज वहां पे डाला गया है। लेकिन इनकी तो क्रिएटिविटी हो गई, हमारी तो मौत आ जाती कि है रेडियो बंद हो गया, क्या गाना क्यों नहीं चल रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: नहीं।
1: मजा आया क्योंकि एक और पुराना गाना रीमेक बनकर चर्चा में आया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है 1981 की फिल्म अरमान का दिस सुपरहिट सॉन्ग
2: रंबा हो, हो, हो।
1: डिस्को वाला गाना है, बताने की बात नहीं है कि बप्पी लहरी साहब ने इसे कंपोज किया है। श्याम लाल बाबू राय कॉमनली नोन एज इंदिवर साहब, उन्होंने लिखा है एंड गाया है, क्या गाया है, उषा उत्थुप जी ने। वैसे ये गाना सैंपल किया गया है, एक्चुअली कॉपी किया गया है बोल सकते हैं, फ्रॉम अ 1979 सुपरहिट सॉन्ग, एक फ्रेंच म्यूजिकल ग्रुप ने जो रिलीज किया था, के सेरा मी विदा, ये वाला। वैसे रामबा हो में ना 70s के एक अमेरिकन गाने का म्यूजिक भी थोड़ा सा लिया गया है, द सॉन्ग कॉल्ड आई फील लव बाय डोना समर्स, जिन्हें क्वीन ऑफ डिस्को भी कहा जाता था। खैर हम अपने वाले पे आते हैं, आप इस गाने का वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ही फेस्टिव सेलिब्रेटरी कलरफुल सा वाइब है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

ये गाना मेनली लता मंगेशकर जी एंड SP बालासुब्रमण्यम जी ने गाया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसमें दो आवाजें और हैं, शैलेंद्र सिंह एंड उषा मंगेशकर जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उषा मंगेशकर जी ने ज्यादा गाने गाए नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं गाए, लेकिन मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो शी इज अ लेजेंड। इनफैक्ट इस साल उन्हें फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और भी कई भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कुछ हिंदी फिल्मी गानों के लिए भी उनको अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था, जैसे कि 1977 की इनकार फिल्म का ये गाना, कंपोज्ड बाय राजेश रोशन, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी एंड सन बाय उषा मंगेशकर जी। जी सुनते हैं यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
4: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन
3: बार,

0: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है,
0: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
3: हेलो
2: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन।

0: सिलेंडर मैं तो चला किचन के अंदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड इफ यू नो ये कैलेंडर कौन है, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर है। 1987 में ये आइकॉनिक मूवी रिलीज हुई थी एंड दिस किरदार कैलेंडर क्या प्ले किया था सतीश कौशिक साहब ने। और सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कहां से आया था ये किरदार,
1: कैसे कैलेंडर बना। वो मेरे फादर के डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है, तीन पेटियां आई और तीन पेटियों में से कैलेंडर एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया। तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहां से आया। एंड दैट इज हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेम्बर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था, एंड एवरीबॉडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो।
0: और क्या ही डायलॉग्स लिखे हैं सलीम जावेद ने, याद है इसमें अनिल कपूर का किरदार अरुण भैया इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कैलेंडर क्यों रखा, तो वो बोलते हैं कि जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

काश जैसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ माला माल फिल्म के नसीरुद्दीन शाह साहब के किरदार की। ये 1988 की फिल्म है माला माल, विच इज बेस्ड ऑन 1985 की हॉलीवुड फिल्म ब्रूस्टर्स मिलियंस, जो अगेन एक नॉवल पर बेस्ड है। इस सब्जेक्ट पे कुछ 6 फिल्में बन चुकी हैं। तो अपने वाले की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक लुखे लफंगे गरीब से लड़के को अचानक से उसके करोड़पति दादाजी की दौलत मिल जाती है, 330 करोड़ रुपए। लेकिन शर्त यह है कि उसको 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तभी उसको 300 करोड़ मिलेंगे। अभी इस चक्कर में क्या क्या होता है, इट इज अ फन वॉच। मतलब काफी खामियां है फिल्म में, लेकिन तो भी एक बार तो देखे जा सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टिंग। साथ में सतीश शाह साहब भी हैं, वो भी मजेदार हैं। तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

तो मैंने देखी 1979 की फिल्म नौकर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है संजीव कुमार साहब, जया भादुरी एंड महमूद। अब एक्टर्स इस कैलिबर के हैं तो परफॉर्मेंसेस तो अच्छी होंगी। यस, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इसीलिए फिल्म एंटरटेनिंग है। तो सीन कुछ यूं होता है कि संजीव कुमार साहब एक सिंगल फादर प्ले कर रहे हैं जो दूसरी शादी नहीं करना चाहते, इस डर से कि उनकी जो छोटी सी बेटी है उसकी स्टेप मदर उसको ढंग से ट्रीट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उनकी फैमिली उनको शादी करने के लिए कन्विंस करती है। अब जब ये लड़की देखने जाते हैं तब क्या चक्कर चलता है मालिक नौकर का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। और एक्चुअली आई वाज लाइकिंग जया भादुरी जी की परफॉर्मेंस। व्हेन आई रेड अबाउट इट आई गॉट टू नो कि इस फिल्म में उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो मेरी तरफ से एक फन लाइट मूवी है ये, जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा ड्रामा भी है क्योंकि इसमें ललिता पवार जी भी है, बट देख सकते हो, रेकमेंडेड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: one of the most intelligent and wittiest actors Indian cinema ke the Farooq Sheikh sahab. Mirchi sun rahe aap purani jeans par main hu Charu aapke saath. तो उनकी शुरुआती फिल्मों में से थी सुपरहिट फिल्म नूरी, जिससे वो और पूनम ढिल्लो दोनों बहुत पॉपुलर हुए. पूनम ढिल्लो की आई थिंक वो दूसरी फिल्म थी. तो उनसे ना बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया कि नूरी फिल्म से पूनम ढिल्लो के पैर जो है वो तो फिल्म इंडस्ट्री में जम गए, लेकिन ये थोड़े से फिसल गए क्योंकि उनका करियर उतना नहीं चला था इस फिल्म के बाद. तो इस सवाल के जवाब में सुनिए फारूक शेख साहब ने क्या कहा.
1: दरअसल नूरी के बाद जो है मैंने पूनम से पूछ लिया था कि वो अपने जूते कहाँ बनवाती हैं ताकि मेरे भी पैर खूब जम जाएं. तो दो साल तक मैंने नूरी के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की. मैं इसी की तलाश में था कि कहाँ से बनवाऊं. फिर दो साल के बाद मैंने सई परांजपे के साथ चश्मे बद्दूर की, जो खुशकिस्मती से बहुत चली और मकबूल हुई. और उसके बाद फिर उमराव जान की वगैरह वगैरह वगैरह. तो फिर जो है पूनम जी अपनी जगह जमी रही और मैं अपनी जगह चलता रहा.
0: भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फारूक शेख साहब की. मैं तीन फिल्में उनकी सजेस्ट करूँ आपको देखने को. ये फिल्में हैं पीछा करो, किसी से ना कहना और अब आएगा मजा. मजा आ जाएगा आपको ये फिल्में देखकर. खैर यहाँ पर हम नूरी फिल्म का गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं.

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम मुझे
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा
1: हूँ, नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं आप, कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
1: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल,
1: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
1: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको आपको से फोन मत करियो, मैं पहले इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पकड़ा।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

देवानंद साहब को मुच्छी लगाने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कुछ फिल्मों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1975 की फिल्म वॉरंट का ये गाना, जिसमें देवानंद साहब पे जो मूछों वाला लुक है ना, वो somehow मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। बहुत ही क्लाउनिश कैरिकेचरिश लग रहे हैं वो। और मुझे हैरानी है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद साहब को ना मूछे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको अपना क्लीन शेवन लुक पसंद था और उनको नकली मूछे लगाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए किसी रोल के लिए अगर मूछ चाहिए भी होती थी तो वो अपनी उगा लेते थे। लेकिन ये वाले गाने में और एक और गाना था गैम्बलर फिल्म का, दोनों में जो मूछें उनकी दिख रही है ना वो नकली दिख रही है। इसमें तो खास करके जैसे वो चाचा चौधरी की मूछ लगी वो बिल्कुल ऐसी लग रही है। खैर कई बार हो जाते हैं गूफ अप, वो क्या बोलते हैं, फैशन फॉर पा, फैशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। द फैक्ट रिमेन्स दैट देवानंद साहब वॉज एक्सट्रीमली चार्मिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

कई साल पहले यानी कि 1929 में गुजरात के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्योंकि परिवार में जय श्री कृष्णा होता रहता था, बच्चे का नाम जयकिशन रख दिया गया। जी मैं बात कर रही हूँ शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की। शंकर जयकिशन वो जोड़ी, वो डुओ जिसने हिंदी फिल्म संगीत को वैसा बनाया जैसा कि हम उसे जानते हैं। इनके म्यूजिक से पहले ना फिल्मी गाने फिल्मों में फिलर्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने वो गाने बनाने शुरू किए जो पार्ट ऑफ द स्टोरी थे। इन्होंने गानों में ऑर्केस्ट्रा का मैसिव इस्तेमाल करना शुरू किया और आने वाले म्यूजिक कम्पोजर्स के लिए एक मिसाल बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

इस गाने को ना कहीं पर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल कहा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के कैमियो रोल के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, हॉन्टिंग लैक ऑफ प्रेजेंस, मतलब इस फिल्म में उनका किरदार था भी और नहीं भी, क्योंकि वो वहीदा रहमान के किरदार के पास्ट का हिस्सा है। ये गाना भी एक्चुअली वहीदा रहमान और धर्मेंद्र पर ही पिक्चराइज है, लेकिन धर्मेंद्र का कभी भी फेस नहीं दिखाया गया है। अलग अलग एंगल से उनको दिखाया गया है, उनकी आवाज सुनाई गई है, लेकिन फेस ठीक से नहीं दिखाया गया है। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है क्यों, नहीं देखी है तो देख लो। और एक्चुअली धर्मेंद्र साहब कितने काइंड हार्टेड थे या सिक्योर थे अपने करियर में, उस टाइम वो बहुत बड़े स्टार थे। और दूसरी तरफ फिल्म के मेन हीरो हम कह सकते हैं राजेश खन्ना, वो नए नए थे, तो भी धर्मेंद्र ने उनके साथ इस तरह का ये कैमियो रोल निभाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट मिर्ची।
1: हेलो
2: मैडम, गुड इवनिंग।
1: हाय,
2: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
1: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
2: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: I'm sorry, नवे, I'm sorry।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: शराबी।
1: अरे सारे शराबी, क्या हो राजा?
0: गली में आजा।
2: होली होली,
3: भांग की गोली, ओ नखरे वाली।
1: दूंगी मैं गाली।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milchi, burga.
2: Hallo.
3: Hi. Ye पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
2: है,
4: या बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहना आपके लिए बहुत चीजें आसान कर देता है, कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर, वो जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ वो इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तो दे आर नॉट लोनली, उनको है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैंने अपनी जिंदगी जी ली अच्छे हैं, मैं अपने आप में ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो द कॉन्वर्सेशन इज नॉट नेसेसरली अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, या मैं शायद नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो ऐसे केस में उनको क्या बोला जाए।
4: सी, ये हमारी एक नेचर है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम फिजिकली, फाइनेंशली, इमोशनली, सोशली इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। हम थोड़ा समय भी बीमार हो, हमें डिपेंडेंट होना नहीं अच्छा लगता कि कोई दो जने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी नेचर नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी किसी किसी समय पर सपोर्ट लेना पड़ता है और सपोर्ट देना भी पड़ता है, एंड दैट इज ओके। बट ये नेचुरल नेचर इंडिपेंडेंट होने की है, इसलिए हमें कई बार लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ की तरह हैं। पर फिर भी मुझे लगता है, देखो, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, मैच्योर हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप जल्दी से किसी पर बोझ नहीं बनते। जैसे बुजुर्ग अवस्था में कई बार क्या होगा, फिजिकली आप कई बार किसी पर बोझ बन जाते हैं, आप चाहते नहीं हैं, आप एज कर रहे हैं, आप उतना कंफर्टेबली अकेले नहीं चल पाते हैं, आपको छोटे छोटे कामों में भी किसी का सपोर्ट लग सकता है, इट इज ओके, उसमें आपके पास बहुत चॉइस नहीं है। लेकिन इमोशनली अगर आप इरिटेबल हैं, गुस्सा करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, वो आप ज्यादा बोझ बन रहे हैं दूसरे लोगों पर। केयर गिवर और केयर टेकर को सबसे अच्छा लगता है कि जिसकी वो केयर कर रहा है ना
3: वो मस्त रहे, बिल्कुल, बहुत खुश।
4: अगर वो खुश है, मस्त है, हल्का है, कोई ऐसी बात कर देता है जो उनका भी दिन बन जाता है, तो एक्चुअली आप भले फिजिकल सपोर्ट ले रहे हैं लेकिन आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं।
3: वाह, क्या बात।
4: इमोशनली इंडिपेंडेंट हमेशा रहना जरूरी है, वो आपके हाथ में है, फिजिकली हमेशा आपके हाथ में नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी से सपोर्ट लेना किसी पर बोझ बनना नहीं होता, कई बार ये इमोशनली सपोर्ट करती है आपको। आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: नील साइमन का एक प्ले है द सनशाइन बॉयज, वो दो बुजुर्ग कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में जो अब रिटायर हो चुके हैं या बहुत सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। उसमें एक सीन है जहां उनमें से जो एक कॉमेडियन है वो बीमार है और एक केयरटेकर उसके पास है, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्योंकि बहुत अच्छा है तो केयरटेकर बहुत परेशान करते हैं, और केयरटेकर कहते हैं तुम्हारी परेशानी इसलिए ले लेती हूँ तुम ये जो करते हो क्योंकि तुम बहुत ह्यूमरस बंदे हो, तो आई डोंट माइंड डूइंग ऑल ऑफ दिस जो तुम नाटक करते हो। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फिजिकली चाहे आप वीक हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, तो शायद आपकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी।
4: एम्स हॉस्पिटल के एक नर्स कुछ समय पहले मिले थे और वो सुना रहे थे कि वो उस वार्ड में थे जहाँ पर ज्यादातर वो लोग आते थे जिन पैरालिसिस हो जाता है। तो कहा एक दिन ऐसे एक्सीडेंट से कोई आया और उसका चेहरे से नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज था, एंड शी सेड दैट वाज नॉट अनयूजुअल फॉर अस क्योंकि हम उसी वार्ड में काम करते थे कि जहाँ पर किसी का हाथ किसी का पैर, लेकिन वो सारे जो पैरालाइज्ड होते थे वो बहुत ज़्यादा उदास, हम किसी पर बोझ हैं ऐसे करके। अब ये व्यक्ति जो आया, जैसे आपने कहा, बहुत मुस्कुराता हंसमुख, और वो बार बार ये कहता था ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, खुद भी कहता था ठीक हो जाएगा, सबको भी कहता था ठीक हो जाएगा। एंड शी सेड आफ्टर 6-8 मंथ्स सारे सपोर्ट सिस्टम के साथ वो ठीक हुआ और चल करके वहाँ से निकला, और तब हम सबको रियलाइज हुआ कि अगर आपने ठान लिया
3: तो फिर तो भगवान
4: तो कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है। पर ठान लिया का मतलब क्या था, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत थी, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत थी, तो वो केयर गिवर्स के लिए भी आप इंस्पिरेशन बन जाते हैं।
3: क्या बात,
4: तो वो डिपेंडेंसी ना हो, बाकी सब डिपेंडेंसी कई बार हमारे बहुत हाथ में होती नहीं है।
3: क्या बात है, तो जिंदगी बेसिकली आप कह रहे हैं कि शैलेंद्र की लाइनों की तरह है जिन्होंने अनानी फिल्म में लिखा था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम।
4: एब्सोल्युटली,
3: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: gets hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची. It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब आपको लगे कि आपको मेहनत का फल नहीं मिला तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक सीन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, फिल्म के जैसे। मान लीजिए दिल्ली है, रात के 2 बजे हैं, एक लड़का एक घर में बैठा है, उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है और वो अपनी मार्कशीट जो है जिस पेज पे आता है उसको बार बार रिफ्रेश किया जा रहा है, जैसे स्क्रीन को तरस आ जाएगा और मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो बहुत ऑब्वियस है वो अपने मार्क्स से मायूस है, शायद उसका एडमिशन नहीं हो रहा है जिस कॉलेज में उसको चाहिए, उतने नंबर नहीं आए। दूसरा सीन है, लेट्स से वी गो टू अनदर सिटी, पटना में या फिर किसी और शहर में, एक महिला है, उसका अप्रेजल अभी भी हुआ है, उसको लेटर मिला है, मैनेजर के साथ रिव्यू था और उसको 2 शब्द बोल दिए गए हैं, मीट्स एक्सपेक्टेशन। और वो बात जो है उसको बहुत चुभ गई है। 11वीं बार वो अपना लेटर देख रही है और उसको लग रहा है कि मेरी 5 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, 2 साल से मैं जो कड़ी मेहनत कर रही हूँ वो 2 शब्दों में समा के रह गई है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है और उस लड़के को ऐसा लग रहा है जो बार बार पोर्टल रिफ्रेश कर रहा है कि ये जो मार्क्स हैं और ये जो अप्रेजल लेटर में जो मुझे बोला गया है, जो 2 शब्द, वो मुझे डिफाइन और मेजर करने लगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सबको पता है कि ये मार्क्स जो हैं, ये जो अप्रेजल लेटर है, हमको डिफाइन नहीं करते, हमको मेजर नहीं करते, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि ये जो एग्जाम बार बार आता है उसी में हम फेल होते रहते हैं?
4: क्योंकि हमें बहुत आदत है बाहर के वैलिडेशन की। ऑल आवर लाइव्स वी हैव लिव्ड दैट वे कि हमें लगता है हम कुछ हैं अगर हमें बाहर से अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट या वैलिडेशन मिलता है, और वो अगर नहीं मिलता तो वी स्टार्ट गोइंग इनटू दैट सेल्फ डाउट कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। अब आप उस बच्चे के मार्क्स की बात करें तो पहली चीज उसको ये चेक करनी है, क्या मैंने अपने फुल पोटेंशियल तक परफॉर्म किया है। ये भी कई बार होता है कि उस समय पर हम लेजी होते हैं और मार्क्स देखने के समय हम सोचते हैं कि कुछ वहां पर मैजिक या मिरेकल हो जाए। तो अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट से भी ज्यादा दिया है, देन उस मार्क्स को देख करके आपको खुश होना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ उतार चढ़ाव है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट जो हम कई बार मार्क्स को लेकर के या छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने अपसेट हो जाते हैं। ये भी सवाल अपने से पूछना चाहिए कि जब जीवन मेरे अनुसार नहीं चलती है तो हम कितने स्टेबल रह पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपने बच्चों के ट्रू पोटेंशियल को सेलिब्रेट करें, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कंपैरिजन तो सही नहीं है, लेकिन शायद कारण यह है कि ज्यादातर इंसान जब अपनी खुद की जर्नी देखता है तो देखता है कि शुरुआत में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पसंद नहीं था, लेकिन मैं ठीक ठाक निकल गया, मेरी जिंदगी खराब नहीं है।
4: पर जिन चीजों ने आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराया या जिस प्रकार की पेरेंटिंग में जो चीजें आपके लिए कंफर्टेबल नहीं थी,
3: वो अपने बच्चों के साथ मत करो।
4: आप थोड़ा अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर के आते तो हाउ विल वी ग्रो एज अ सोसाइटी। कभी कभी होता है जो मेरे साथ हुआ वही मैं करूंगा, मुझे बुली किया मैं भी बुली करूंगा, मुझे कंपेयर किया वेयर ऑल्सो वी बिकमिंग द सेम पर्सन। इट्स वेरी स्कैरी ऑल्सो कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती थी
3: हम वही कर रहे हैं जी।
4: तो हमें कंपेयर किया जाता था, हमें अच्छा नहीं लगता था, आज हम अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं। सो सी, मार्क्स इज इम्पोर्टेंट बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी इमोशनली स्ट्रांग। वाई इमोशनली स्ट्रांग? वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू योर ट्यून्स। अच्छा, आज आप बताओ, आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो हमेशा हाई रैंकर थे, आज वो भी मार्केट या सिनारियो चेंज होता है तो उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी और फियर है कि नहीं है?
3: बिल्कुल है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो।
4: इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं होती है कि आपने जो सोचा था वहाँ पहुँच गए। रियल इंटेलिजेंस इज कि जब आपके सामने जो सीन है कि आप उसको फेस कर सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: दैट इज रियल इंटेलिजेंस। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हमारे लिए रियल इंटेलिजेंस रह जाती है कहाँ तक? आई एम नॉट डिनाइंग कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्क्स हैं, डिग्रीज हैं, वो आपको कहीं पहुंचाते हैं, पर ट्रस्ट में उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितने इमोशनली स्ट्रांग हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे भी होंगे, आप निकल जाएंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू वर्क विद द टीम, यू नो हाउ टू टॉलरेट, यू नो हाउ टू अकोमोडेट, यू नो हाउ टू लव एंड रिस्पेक्ट पीपल। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, टीम में काम नहीं कर सकते।
3: सही बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने की। नीदा फाजली जी ने लिखा था कि जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलती, और शायद आप यही कह रहे हैं कि अगर हमको समझने वाले लोग मिल गए और वो हमको सही तरीके से गाइड करेंगे तो शायद हम ठीक ही निकलेंगे।
4: एक पेरेंट को ये समझना चाहिए कि अगर उसका बच्चा, पहले तो पेरेंट से ज्यादा तो किसी को भी उसकी कैपेसिटी नहीं पता, अगर वो बच्चा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उनको खुश होना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: अगर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं जो उसकी कैपेसिटी है ही नहीं उस बच्चे की, आप अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। अब प्रेशर डालने का मतलब है आप खुद इमेजिन करके देखे, अब चलना है मुझे और अगर मेरे सर पे कोई 20 किलो का वजन रख दे
3: तो कैसे चलेंगे हम?
4: मेरी स्पीड कम हो जाएंगे। पेरेंटल प्रेशर, हाँ, पेरेंटल प्रेशर मेरी परफॉर्मेंस को हार्म कर रहा है एक्चुअली में।
3: सही कह रहे हैं।
4: जो पेरेंट्स कहते हैं ना अपना बेस्ट दो, हमें पता है आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपना 100% दो, आप अपना बेस्ट दो, उसके बाद जो होगा
3: देखा जाएगा।
4: नहीं, हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज द बेस्ट, वी विल सेलिब्रेट दैट। वो बच्चा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म करता है।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। इन्होंने अपना नाम छोड़ा है मैथ्स बेस मेकर, मेरे ख्याल से कोई काम का हैंडल होगा। वो लिखते हैं कि अगर हमारे आसपास हमेशा डोमिनेटिंग लोग हों जो हर बात में कंट्रोल करते हैं, दबाव बनाए रखते हैं या हमारी बात और भावनाओं को महत्व ना देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ शांति और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए कैसे रहना चाहिए?
3: डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, अभी हम हमेशा कहते हैं चॉइसेस। अगर आप किसी डोमिनेंट व्यक्ति के साथ रहते एंड इफ इट्स गेटिंग वेरी टॉक्सिक फॉर यू और आपके पास ऑप्शन है लीव करने का, तो भले अगर आप कर सकते हैं। अगर वो वर्क प्लेस आदि है और आपको लगता है सामने वाला गलत है, दबाता है, कंट्रोल करता है, अपनी पावर को मिस यूज करता है, तो आपको अगर उसमें से निकलना है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, इट इज ओके, बट दैट इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। कभी कभी तो आप वर्क प्लेस में भी नहीं छोड़ सकते, कभी कभी तो वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो दूसरी चीज होती है कि अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े।
2: जी।
3: कोई आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके माइंड को तो डोमिनेट नहीं कर सकता ना। बाहर आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, आपको गलत लगता है, आप मना करेंगे, तो कंट्रोलिंग व्यक्ति रिजेक्ट करेगा।
2: सही बात है।
3: पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर है,
2: बिल्कुल।
3: रिजेक्ट भी करेगा, आपसे कुछ प्रिविलेजेस भी ले लेगा।
2: बहुत बढ़िया।
3: लेकिन अगर आप अपने को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि उस रिजेक्शन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता और आप किसी भी प्रिविलेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप राइट पर रह सकते हैं। और राइट पर रह करके आपका उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ता। समवेयर आई फील इफ यू कैन लिव विद अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, यू ग्रो वेरी फास्ट।
2: अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि आप एडजस्ट करना सीख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसको अवॉइड करना है या इसको ऐसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। कई लोग उसी चीज को चैलेंज समझते हैं, कहीं उसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आप अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कहेंगे कि ये वही तो ट्रिगर कर सकते हैं जो मेरे अंदर है। वो कंट्रोलिंग है तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होऊंगा। अगर सी दे कैन ओनली ट्रिगर व्हाट इज विद इन मी, वो तो नहीं ट्रिगर कर सकते जो मेरे अंदर है। तो अगर कोई डिफिकल्ट पर्सनालिटी है, वो हमारी वीकनेसेस को भी ट्रिगर करती है।
2: वेरी नाइस।
3: अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझूं एंड आई सी इट एज अ मिरर कि ये मेरे अंदर भी तो मैं जल्दी जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे अंदर बहुत वेस्ट चलता है, सो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने को एम्पावर करूँ ना। कितनों को छोड़ेंगे,
2: बिल्कुल सही बात।
3: कितनों से किनारा करेंगे,
2: सही बात।
3: कितनों को बदलेंगे, इससे तो अपने को बदलने।
2: और मैथ्स बेस मेकर जो इंस्टाग्राम का हैंडल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिद है उनकी आंधियों की तरह चलने की, तो हमारी भी आदत है दिए की तरह चलने की। ये सोचें और आगे बढ़ें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: इससे सीमा जैन का सवाल आया है कि अगर लाइफ में सभी लोग हमारे खिलाफ हों तो ऐसे समय में हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए।
3: थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सब अगेंस्ट क्यों है। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं तो कई लोग हमारे फॉर होते हैं, कहीं अगेंस्ट होते हैं, कहीं सहयोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, which is okay.
2: सारे अगेंस्ट
3: होते हैं तो कई बार हो सकता है हमारे अंदर भी फॉल्ट है और हम शायद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। सारे अगेंस्ट होना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। बाकी ये जरूर है कि आप कभी भी कुछ करते हैं तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल।
2: बिल्कुल।
3: और अग्री डिसएग्री एक अलग बात होती है, अगेंस्ट अगेंस्ट तो ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों वो अगेंस्ट हैं, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। देखो, हर चीज में लोगों की दुआएं भी सफलता दिलाती हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: उनका हमारे से संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम सही कर रहे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उनको कन्विंस करने के तो कोशिश करें। अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी फॉल्ट हो, तो रियलाइज करके चेक करके चेंज करने की जरूरत है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुजीत ने सवाल भेजा। सिस्टर कहते हैं कि विद्यालयों में हमें सिखाया जाता है कि जीवन में नैतिकता और कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जन्म से गंभीर बीमारियां होती हैं उनको, उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो लोग पूछते हैं कि उस समय परमात्मा कहाँ होते हैं। जब बच्चे सही गलत भी नहीं समझते, उनके साथ ऐसे कर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो उनके कर्मों का परिणाम है या परमात्मा की इच्छा है? वो ऐसे सवाल उठने पर लोगों को क्या समझाया जाए ताकि वो परमात्मा को दोषी ना ठहराएं और सही दृष्टिकोण समझ सके।
3: जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक्चुअली हमें उस बच्चे के लिए दुख होता है। हमारा जो एक नेचुरल संस्कार है वो कंपैशन है, रहम है। किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन फिर ये भी एक सत्य है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। बस फर्क ये होता है कि जब कॉस्ट्यूम बदल जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता। अगर वो उसी समय पर हो, जैसे अभी आज कोई बच्चा बारिश में खेल रहा है और वो कल बीमार हो जाए, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता। आप कहेंगे मुझे तो पता था कि ये होना है। अब ये छोटी बात है, कोई लंबा समय से हैवी ड्रिंकर होता है, फिर किसी दिन उसका लिवर खराब हो जाता है, 40 इयर्स के बाद होता है, समझो। लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि मुझे तो पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था। आपको सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉज और इफेक्ट सामने सामने दिखाई दे रहा होता है। डिलेड भी है लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा है। पर कभी कभी कॉस्ट्यूम छूट गया। कर्म कॉस्ट्यूम ने नहीं किया है, कर्म आत्मा ने किया है। इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहते। आज महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे कर्म करे, देश को आजादी दिलाई। हम महात्मा शरीर नहीं कहते, महान आत्मा कहते हैं।
2: हाँ।
3: तो कर्म आत्मा करती है। आत्मा ने कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है। आज आपको इस सृष्टि पर लोग गलत गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसी के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश गलत करते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं ना। और फिर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत करते करते शरीर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारा जीवन गलत किया, इनके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब वो फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते इसने ऐसा क्या किया। पर द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड इज कर्म। दैट इज द ट्रूथ, दैट्स द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड। पर कॉस्ट्यूम देखते हैं तो नहीं समझ में आता। कर्मा सोल करती है, सोल इज ऑन द जर्नी, इसे स्टार्ट ही कैरी फॉरवर्ड से होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. This is your girl Priscilla, and if you're listening while pretending to just check your emails, I see you. Welcome to Mirchi Mornings. यहाँ पर fix होता है तुम्हारे Monday blues से लेकर तुम्हारे jet lag का confusion and your why did I move abroad से लेकर तुम्हारा egg और maggie की recipe. सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, जैसे कि gossip, गपशप, news update and much more. And आज का लाइफ का मंत्रा है, adulting is basically googling how to survive in three different time zones while reheating yesterday's biryani. तो अभी फिलहाल तुम चाय की चुस्किया ले रहे हो, कॉफी के मजे ले रहे हो, या अपना क्रिस्पी ब्रेकफास्ट जो है उसे सर्व कर रहे हो. मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक. तुम भी मुझे अपने साथ रख सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चुपके बैठो मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट मिर्ची।
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
3: नहीं वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
3: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से मुझे
3: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं, उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
3: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा
3: है,
2: मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
3: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको से फोन मत करो, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग के लिए. 1932 में इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स इन लंदन. 1950 में द कोरियन वॉर बिगिंस एज नॉर्थ कोरिया क्रॉसेस द 38th पैरेलल. 1975 में इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी. 1983 में कपिल देव एंड टीम ब्रिंग होम इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विन एट लॉर्ड्स. 2009 में द वर्ल्ड मोन्स माइकल जैक्सन द किंग ऑफ पॉप. And somewhere between all this, we also got Anne Frank's diary published and the rainbow flag first flying in 1978. And that's it for history for today. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect with me. Mirchi Pris is my handle name on Insta and X. MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरे पास है क्रिकेट स्टोरी।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: इंडिया के टीनेज क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी इज हेडिंग टू द यूके। Now here's the interesting bit. He'll actually have a different changing room from his teammates. Before your WhatsApp family group starts creating conspiracy theories, relax. Reason iska bada simple hai. Vaibhav is just 15 years old and in the UK there are strict safeguarding rules for anyone under 18. That means separate changing rooms, separate shower and restroom facilities when minors and adults are sharing spaces. Basically, the UK is saying future cricket superstar to hai, lekin also he is still a kid. It's all about privacy, child protection and making sure young athletes are properly looked after. And honestly, imagine being 15 and hanging around people who are from 25 to 40. हम में से ज्यादातर लोग तो उस एज में सिर्फ सर्वाइव करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद लर्निंग अलजेब्रा एंड टेकिंग ऑकवर्ड स्कूल पिक्चर्स। सो हियर्स विशिंग वैभव ऑल द बेस्ट एज ही कंटिन्यूज हिज इनक्रेडिबल जर्नी। और तुम्हारी जर्नी में आगे आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड एक्स हैंडल्स, दोनों ही जगह पर मेरा नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किने खालिया, गुड़ वाली चाह किने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किने खिचिया,

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड अगर स्टेप आउट करने वाले हो, उसके लिए ड्रेस ढूंढ रहे हो, तो लेट मी टेल यू आज का वेदर कैसे रहने वाला है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ कूल 62 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स मोस्टली क्लियर। एंड एज वी हेड इनटू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, एक्सपेक्ट कि कुछ क्लाउड्स जो है वो सुबह सुबह काम पर आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, फिर उसके बाद मोस्टली क्लाउडी हो जाएगा और फिर क्लियर हो जाएगा। आज का टेम्परेचर रेंज जो है वो 61 से लेकर 85 डिग्रीज फारेनहाइट तक है, फीलिंग मोर लाइक 62 टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट। तो आज के दिन भी हुडी पहनने का मन तो तुम्हारा करेगा, वेदर भी कुछ ऐसा ही है। एंड रेन लवर्स, डोंट गेट योर अम्ब्रेलास टू एक्साइटेड, आज वो घर पर नहीं रहने वाले। फोरकास्ट इज कॉलिंग फॉर लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ रेन ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स। दैट्स नॉट एक्चुअली रेन, दैट्स जस्ट ड्रिजलिंग। एंड फन फैक्ट, आज का हाई टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यस्टरडेज। कल का वेदर जैसा था वैसे ही आज का वेदर होने वाला। तो अभी अगर बाहर निकलने वाले हो तो अपना SPF 50++++ लगाकर बिल्कुल जाना, और साथ में अपना अम्ब्रेला भी कैरी करना। एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, नॉट बरसात के पानी से बल्कि एक्चुअल पानी से। और अभी फिलहाल मिर्चीदार गानों के लिए बने रहो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में, मुझसे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर तुम्हें मिलती है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले द इंटरनेट इज हैविंग अ फैशन मोमेंट आफ्टर उषा वांस प्लेफुली रिस्पॉन्डेड टू एन आर्टिकल डिस्कसिंग हर मैटर्निटी स्टाइल। शी इवन शेयर्ड अ रिसीट शोइंग वन ऑफ हर ड्रेसेस कॉस्ट जस्ट $8.75। ऑनेस्टली समवेयर इट्स लेस देन इवन अ फैंसी कॉफी। नंबर टू पर इन द पुणे बिजनेसमैन मर्डर इन्वेस्टिगेशन लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग चेतन चौधरी से देर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस लिंकिंग हिम टू द क्राइम एंड दैट ही हैड बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। Authorities continue investigating the case while legal proceedings move forward. As always, the courts will determine the facts. And number three, per big congratulations are pouring in for actress Samantha Ruth Prabhu, who has confirmed that she is expecting her first child. Samantha shared that she'll be taking a maternity break before returning to films. Fans across the world are sending their love and best wishes. And there you have it, Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla, on Mirchi Mornings. Connect with me in Star Expert. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme aaye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, आपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी
2: सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, यू आर बेसिकली शेयरिंग योर स्पेशल डे विद सम एब्सोल्यूट लेजेंड्स. कौन है वो, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले वीव गॉट कार्ली साइमन, द वॉइस बिहाइंड योर सो वेन. एंड देन वीव गॉट रिकी जर्वेस, द मैन हु मेड ऑकवर्ड कॉमेडी एवरीवेयर पॉपुलर. एंड एक्ट्रेस लिंडा कार्डलिनी एंड बिजी फिलिप्स. Yes, that's a real name. And also, nostalgia alert, we've got Eric Carle, creator of the Very Hungry Caterpillar. Sports icon may we've got Dikembe Mutombo. And of course, Willis Reed. So, agar aaj tumhara happy wala birthday hai, then you're sharing your space with comedy, justice, sports, history and a little bit of chaotic energy. Apne birthday shoutouts mujhe bhej sakte ho. To Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp karna hai to 9033 Mirchi is my number. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you, Mirchi Mornings. पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
2: Rajos wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,240. $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं. और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं. और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Ya bala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा

0: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए, वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
0: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
0: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
0: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहाँ से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
0: मैं कहाँ से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, चाहे तो 2 मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है
0: यार, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब बारी आ चुकी है हमारी कॉस्मिक बातें सुनने की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, इंपल्सिव एनर्जी अलर्ट। करियर मूव्स में लेट्स डू इट से पहले जस्ट डू अ क्विक शुड आई दो। लकी कलर इज फायरी रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ऑर्गेनाइज योर लाइफ बिफोर योर लाइफ ऑर्गेनाइजेस यू। फाइनेंसेस का स्ट्रिक्ट मोड ऑन करने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, टुडे इज हग योर पीपल

energy kind of day. Emotional Wi-Fi strong rehna emotional Wi-Fi ko strong rakhna padega aaj. Lucky color is yellow, lucky number is 5. Cancer yani Kark Rashi, healing mode activate kar lo. Bas thoda sa self care, thoda don't take that person back wali energy lekar aani hai. Lucky color is silver, lucky number is 2. Leo yani ki Sinha Rashi, opportunities plus drama ka combo pack aaj mila hua hai tumhe. Heart ko open rakho, dimag ko open rakho, ego ko airplane mode par dal do. Lucky color is gold, lucky number is 1. Virgo yani Kanya Rashi, brain overdrive पर चल रहा है लेकिन प्रोडक्टिव भी है. फाइनेंसेस प्लस रोमांस इज इक्वल टू बैलेंस्ड स्प्रेडशीट. लकी कलर इज नेवी ब्लू, लकी नंबर इज 8. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन का पार्ट 1. बाकी बची 6 राशियों को पार्ट 2 में लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: FG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, मेरे दोस्त, मेरा यहाँ से जाने का टाइम शुरू हो चुका है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड डू यू रिमेम्बर पंचायत, द शो एवरीवन लव्ड? उसमें एक कैरेक्टर था विनोद, और उस शो में एक बहुत ही फेमस मीम बना था, देख रहा है ना विनोद. उस मीम के मेन कैरेक्टर्स जो है, उनमें से एक मिस्टर अशोक पाठक रिसेंटली शेयर्ड अ हिलेरियस मेमोरी आफ्टर मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी. अपेरेंटली व्हेन द कास्ट ऑफ पंचायत मेट द प्राइम मिनिस्टर एट अ समिट, पीएम मोदी ग्रीटेड हिम विद द नाउ आइकॉनिक लाइन, सुन रहा है ना विनोद? एंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, द फर्स्ट टाइम वी हर्ड इट, द एंटायर रूम बर्स्ट इनटू लाफ्टर. अशोक ऑल्सो शेयर्ड समथिंग रियली हार्टवार्मिंग कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज. ही सेड दैट व्हेन हिज फादर हर्ड ही'ड बीन इनवाइटेड टू the Prime Minister of India, he was absolutely over the moon. And honestly, that's the part I love the most. Whether you're from Mumbai, Multan, Chennai, Colombo, Dhaka, Karachi, Kathmandu, or any tiny village nobody can find on Google Maps, big dreams don't care about your pin code. It's also proof that sometimes the smallest roles, the simplest characters, and the most unexpected one-liners end up becoming part of pop culture forever. And aaj ka takeaway yahi hai, never underestimate your moments. One day you are saying a line and the next day the whole country is saying it back with you. And on that happy, happy note, it's time for me to bounce. Tata bye-bye from me. Thank you for letting me part of your morning commute, your kitchen session, your dream struggle and your life. Stay connected with me on Instagram and X. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छा म्यूजिक एवरग्रीन होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरा साया फिल्म का ये गाना, आशा भोसले की आवाज, मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। ये मूवी आई थी 1966 में और इस गाने का जो रिवैम्प्ड वर्जन है और झुमका वाला जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आया था वो 2023 में आया था। क्या होते हैं 60 ईयर्स, मतलब एक गाना आप सोचिए 60s में रिलीज हुआ, उस टाइम के जो लोग थे उनकी पसंद बना, फिर अक्रॉस द इयर्स एंड डेकेड्स वो गाना लोगों को पसंद आता गया, इतना पॉपुलर। दिस इज द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय मदन मोहन जी, द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, जो ज्यादातर फेमस हैं अपनी मेलोडीज के लिए, अपनी गजल्स के लिए। तो सुन लेते हैं, रिटन बाय राजेंद्र कृष्ण, संग बाय लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अदालत। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल
2: से कम मुझे
1: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा है, मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
1: नहीं नहीं

0: आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है। क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए पूरी। हेलो
1: हेलो
0: भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार। यार बात सुनिए आप मेरी, मैं आपसे सिर्फ एक बात, विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

कमाल ही करते हैं कोहली साहब. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन कोहली जी की. जी जैसे जैसे मास्टरपीसेस गाने इन्होंने बनाए हैं, यकीन नहीं होता कि इन्होंने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. ऐसे बचपन में बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीखा, लेकिन जिस तरह के तगड़े इनके गाने हैं वैसी तगड़ी इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है. बंदा बॉर्न टैलेंट था भाई. उसके बाद इतना म्यूजिक सुना, कॉन्सर्ट शोज, पता नहीं क्या क्या अटेंड किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, 2 साल SD बर्मन साहब को असिस्ट भी किया. 1950 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म आंखें का म्यूजिक दिया. उसके बाद कुछ और म्यूजिक भी दिया, लेकिन वो इतना हिट नहीं हुआ. मदन मोहन जी का पहला सुपरहिट गाना जिसे हम कह सकते हैं वो ये जो हम अभी सुनने वाले हैं. ये गाना ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. इतना क्यूट प्यारा गाना है ये. 1956 की फिल्म भाई भाई. गाना लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, गाया है गीता दत्त ने. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हकीकत फिल्म का ये गाना कंपोज्ड बाय द मैजिशियन कॉल्ड मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं और काफी इंटरव्यूज में काफी इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में शेयर की थी उनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर जी ने। तो लता मंगेशकर जी की आवाज में ही सुनते हैं कि ये भाई बहन की जोड़ी कैसे बनी, फिर इस जोड़ी का गाना भी सुनेंगे राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: 36 बरस बड़ा ही लंबा अरसा होता है और जब तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, उस जमाने की यादें ताजा होती हैं, तो एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मेरा नाम थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अभी बहुत सी मंजिलें तय करना हैं। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मैं खुश थी कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे याद किया। मैं खुशी खुशी फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंची। पता चला एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, शहीद। उसी का एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। न मैंने कभी उन्हें देखा था न गाना सुना था। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। ये जानकर हंसी आ गई, मालिक के बेटे का संगीत से क्या संबंध। भाई और बहन का गीत था, बोल थे, पिंजरे में बुलबुल बोले मेरा छोटा सा दिल डोले। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा। ये थी मदन मोहन से मेरी पहली मुलाकात। म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज राखी का दिन है, लो मुझे राखी बांधो। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे। और मैंने भी यही कोशिश की कि बहन का नाता पूरी तरह निभाती रहूं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।
1: माना मेरी जान मोहन।

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे बेचारा, अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vida para la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
2: वही आके ऐसा तेरे पैर तो मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं।

के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बहुत ही यंग एज से, क्योंकि किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार और मदन मोहन के फादर राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली जी, ये दोनों बॉम्बे टॉकीज और फिर फिल्मिस्तान के लिए काम करते थे। तो ये दोनों लड़के अक्सर स्टूडियो में या कैंटीन में मिला करते थे और बातें करते थे कि साथ में काम करेंगे। एंड क्योंकि मदन मोहन जी अपने गानों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते थे कि ये ही आवाज चाहिए, ये ही सिंगर चाहिए, तो जहां जहां जिन गानों में उनको लगा कि किशोर कुमार से उनको गवाना चाहिए, उन्होंने उनके साथ कोलैब किया। तो इसी सुपर्ब कोलैब का एक और गाना सुन लेते हैं। राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है, किशोर कुमार थे इस फिल्म में, उन्होंने ही गाया है। फिल्म का नाम है मनमौजी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

किशोर कुमार की आवाज में गाना कंपोज्ड बाय मदन मोहन, बहुत ही रेयर कॉम्बो है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई दोनों दिग्गजों ने क्योंकि बहुत ज्यादा गानों में साथ में काम नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मन्ना डे की आवाज में ये गाना, देख कबीरा रोया फिल्म का मदन मोहन की कॉम्पोजिशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैंने ना मदन मोहन जी की डॉटर संगीता गुप्ता के एक ब्लॉग में पढ़ा था कि मदन मोहन ने मन्ना डे को कन्विंस करने के लिए कि वो ये गाना गाएं, उनके लिए भिंडी मटन बनाया था। मतलब बकायदा उनको घर पे बुलाया कि मैं आपके लिए कुक करूंगा और आपको अपनी एक ट्यून सुनाऊंगा। भिंडी मटन का जादू चल गया, मन्ना डे ने गाना गा दिया। और सुनिए एक बार इस मल्टी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर की मुंह बोली सिस्टर यानी कि लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में इनके बारे में एक और क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया था।
1: ये मेरी आंखों देखी बात है कि कभी कभी मदन भैया बस 10 मिनट में तर्ज बना देते थे, और तर्ज भी कैसी, वाह। शायरी पर वो बहुत जोर देते थे। जब तक शब्दों में गहराई ना हो, गीतकार को कागज वापस लौटा देते थे। फिर कोशिश कीजिए, जब दिल से बात निकलेगी तब असर करेगी। एक दिन मजरू साहब का गीत रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तर्ज तो थी ही अच्छी, कविता बहुत ही सुंदर थी। रिकॉर्डिंग के बाद मदन भैया इतने ज़्यादा खुश थे कि फौरन पहुंचे स्टूडियो में शाबाशी देने शायर को। आप जानते हैं किस तरह शाबाशी दी? बेचारे मजरू साहब के पेट पर हल्के हल्के दर्जनों मुक्के बरसा दिए। मजरू साहब ठहरे शायर, और वो भी सुल्तानपुर यूपी के। मरहबा का ये तरीका उनके लिए यकीनन एक नया तजुर्बा था। पता नहीं पुरदर्द था या पुरकैश। मदन भैया बोले, घर चलिए, मैं आपको अपने हाथ से पका कर खाना खिलाऊंगा। रस चाहे स्वर का हो चाहे रसोई का, वो दोनों में माहिर थे।

0: वाओ, हकीकत फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे, भूपिंदर की आवाज में, इन चार दिग्गजों को साथ में गवाना, ये काम तो मदन मोहन जी ही कर सकते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मदन मोहन जी अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये बात शेयर हुई थी उनके बेटों संजीव कोहली और समीर कोहली के साथ एक कॉन्वर्सेशन में। सुनिए,
1: ये किस्सा एक है कि जहाँ आरा फिल्म, जिसके गाने बहुत लोगों को पसंद थे, उस फिल्म के दौरान 1964 में रिलीज हुई, तो गाने 62-63 में रिकॉर्ड हो रहे थे, और वो इस बात पे अड़ गए कि मैं तलत महमूद से गवाऊंगा। और तलत महमूद साहब ने कुछ सालों तक गाया नहीं था बीच में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी और दौर बदल रहा था। शायद डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये गाने सिर्फ रफी गाएंगे, रफी साहब का नाम इतना हो गया था। लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, रफी से मैं दो गाने जरूर गवाऊंगा, लेकिन ये तीन सोलोज जो है ये मैं सिर्फ तलत से गवाऊंगा। और बहुत झगड़ा हुआ और मदन जी ने कहा या तो मैं फिल्म छोड़ देता हूँ या फिर मैं ये गाने अपने पैसों से रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो ये गाने फिर मेरे हो गए। और वो गाने रिकॉर्ड हुए और वही तलत साहब की आवाज में रहे। और इनकी जिद थी कि मुझे मालूम है मेरे गाने के लिए क्या आवाज ज्यादा सूट करेगी। रफी साहब ने भी गाया उस फिल्म में, लेकिन तलत साहब के गाने ज्यादा चले।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ इंडियन सिनेमा मदन मोहन जी. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. 21 साल की उम्र से इन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाने की शुरुआत की, लेकिन एक कहते हैं ना सक्सेस या रिकग्निशन या उनका पहला सुपरहिट गीत वो उनको मिला जब वो 32 साल के थे. मदन मोहन कोहली जी की अपनी स्ट्रगल है बावजूद इसके कि वो प्रिविलेज थे. कैसे? ऐसे कि इनके फादर श्री राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली जी ये बॉम्बे टॉकीज या जो बाद में फिल्मिस्तान बन गया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों से जुड़े. बल्कि पिताजी तो चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं, और वो आर्मी में गए, 2 साल सर्व भी करके आए, लेकिन म्यूजिक से दूर नहीं रह पाए. और मदन मोहन जी जब फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, तब इनके फादर ने सभी लोगों को मना कर रखा था कि भाई इसको काम मत देना, ऊनो रिवर्स होता है, यहाँ पे नेपोटिज्म रिवर्स हो गया था. पर वो कहते हैं ना कि इश्क मुश्क और अच्छा टैलेंट छुपाए नहीं छुपते हैं. बंदा इतना टैलेंटेड था कि उसको काम मिलता गया और हिंदी फिल्मों को एक से एक बढ़कर गाने. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: Mirci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burka, burka. Na virbala, burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार आपके पास आया, अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
3: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है
4: यार, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: मदन मोहन जी ने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनके काम को ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट 1970 की फिल्म दस्तक के म्यूजिक के लिए जब उनको नेशनल अवार्ड मिला तो इस खबर पे उनको यकीन ही नहीं हुआ। सुनिए एक बार लता मंगेशकर जी ने उनके बारे में क्या शेयर किया था।
1: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।
0: वैसे इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना मदन मोहन ने भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। थोड़ी साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, बट इट इज वर्थ लिसनिंग टू इट। सुनिए।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot. Purani jeans with Charu. Only on Mirchi.

0: जितने सुरीले मदन मोहन जी के गाने उतना ही कड़क उनका गुस्सा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और गुस्सा इसीलिए क्योंकि इतने पैशनेट थे वो म्यूजिक को लेकर। एक गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब क्या हुआ था, उनके जो बेटे हैं संजीव कोहली और समीर कोहली, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इंसिडेंट शेयर किया था, सुनिए।
1: एक गाना था नैनो में बदला छाए, फिल्म मेरा साया का, वो रिकॉर्ड हो रहा था। बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, शिव कुमार शर्मा जी संतूर पे थे, रईस खान सितार पे थे, लेकिन कोई रिदम वाले गलती बार बार कर रहे थे। उस वक्त क्या था कि रिकॉर्डिंग एक साथ होती थी, ये 60s की बात है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो सिंगर और म्यूजिशियंस को साथ में परफॉर्म करना पड़ता था। तो अगर म्यूजिशियन गलती करे वो गाना उसी वक्त रोक दिया जाता था, फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये चलता रहा और करीब 12-13 टेक ऐसे कोशिश हुई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना भी था और बहुत क्लासिकल गाना है, भीम पलासी पर आधारित। तो वो गाना कट होता गया और ये इतने चिड़े मदन जी कि उन्होंने जाके अपने हाथ से स्टूडियो का जो शीशा होता है कंट्रोल रूम और सिंगर के बूथ के बीच, इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो शीशा टूट गया। उनका हाथ में मतलब खून बहने लग गया, जल्दी से पट्टी बांध दी और कहा, लोगों ने कहा इस हॉस्पिटल ले चले, कहा बिल्कुल नहीं, जब तक ये गाना या अभी रिकॉर्ड नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और अगला टेक परफेक्ट हुआ। ये किस्सा लता जी सुनाती हैं और वो कहती हैं मैं इतनी थक गई थी गा गा के, लेकिन हम इतना डर गए और घबरा गए मदन जी को देख के, फिर शायद जो गाना हमने फाइनली रिकॉर्ड किया वो इसी वजह से इतना अच्छा हुआ।

0: जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो

वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker. Yeah. Heartbeat.

0: क्या हुआ जब यश चोपड़ा ने फोन किया जावेद अख्तर को वीर ज़ारा फिल्म के गाने लिखने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये शेयर किया था जावेद अख्तर साहब ने एक टेलीविजन शो पर, सुनिए।
1: तो उन्होंने मुझे बताया इस पिक्चर के बारे में वीर ज़ारा, उसमें आपसे मैं गाने लिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे गाने हैं और आप ही करेंगे। तो मैंने कहा इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो कहले मदन मोहन जी। तो मैंने समझाया शायद मजाक कर रहे हैं, मदन मोहन जी को तो गुजरे 25 साल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं? कहले भाई उनकी बहुत सारी ट्यून्स थी जो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने उन्हें संभाल के रखा था और उन्हीं के सुपरविजन में ये हम वही ट्यून्स पे गाने करेंगे।
0: कितनी फैसिनेटिंग बात है ये। और आपको पता है तेरे लिए हम हैं जिए वीर ज़ारा का जो गाना है, ये ट्यून ओरिजिनली जिस गाने के लिए बनी थी वो मदन मोहन साहब ने इसे रिकॉर्ड करके भी देखी थी। थोड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है तो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर सुनिए जरा।

दिल ढूंढता है, मौसम फिल्म का गाना। ये फिल्म जिस साल रिलीज हुई 1975 में, उसी साल मदन मोहन जी भी नहीं रहे, बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: ये है बी टाउन की ओरिजिनल स्टाइल आइकॉन एंड 90s की सुपर डुपर स्टार
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: एंड शी इज नन अदर देन करिश्मा कपूर जिनका है आज हैप्पी बर्थडे टू यू। और यार अगर बॉलीवुड के गोल्डन 90s को याद करे तो सिर्फ एक चेहरा सामने आता है एंड दैट इज ऑफ करिश्मा कपूर फॉर मी। सो कपूर खानदान की पहली बेटी हैं ये जिसने फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखा और फिर ऐसा जमाया उस कदम को कि पूरी इंडस्ट्री उनके नाम से गूंज उठी। प्रेम कैदी से शुरुआत करके राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, फिजा और जुबिदा तक करिश्मा ने सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं दिए बल्कि हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई है। इनफैक्ट नेशनल अवार्ड एंड मल्टीपल फिल्मफेयर अवार्ड्स उनकी इसी वर्सेटिलिटी का प्रूफ है। और भाई साहब जहां तक बात आती है इनके डांस की तो वो गोविंदा के साथ इनकी एनर्जी हो या फिल्म दिल तो पागल है का ग्रेस, ये सब कुछ आज भी एक बेंचमार्क माना जाता है। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज कि उनके आइकॉनिक लुक्स एंड सॉन्ग्स जो हैं वो आज के जेन ज़ी भी रिक्रिएट कर रहे हैं, प्रूविंग दैट करिश्मा कपूर इज़न्ट जस्ट अ स्टार ऑफ द 90s, शी इज अ टाइमलेस बॉलीवुड वाइब। सो मेरे और पूरी मिर्ची टीम की तरफ से हियर्स विशिंग हर अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे। देखो यार आप सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नॉस्टैल्जिया का सबसे खूबसूरत चैप्टर हैं।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua, la burka. Mirci, burka.
1: Hello.
2: Hello, madam. Good evening.
1: Hi.
2: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है।

0: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
0: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
2: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
0: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
2: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
2: से सॉरी,
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
2: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को
1: कुकड़ू गो।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पकड़ा हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: जैसे लिट्टी के साथ चोखा, रबड़ी के साथ जलेबी, मोमो के साथ लाल वाली चटनी, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस नजर आने वाले हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज न्यू कॉम्बिनेशंस जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से साल 2026 में हमें नजर आने वाले हैं। एंड दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्टर्स आर गोइंग टू ब्रिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी, केमिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट ऑन द बिग स्क्रीन। देखिए, फ्रेश पेयरिंग्स हैं व्हिच आर सेट टू हेडलाइन सम ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म्स अक्रॉस जॉनर्स फ्रॉम रोमांस एंड हॉरर टू फैंटेसी एंड एक्शन। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद राशा थडानी एंड अभय वर्मा, जिनकी मूवी आएगी लाइका एंड लाइकी, अ यूथफुल एंटरटेनर दैट हैज ऑलरेडी जनरेटेड अ लॉट ऑफ बज। मूविंग ऑन, नंबर दो पे हैं साई मांजरेकर एंड राघव जुयाल, इकाई है इनकी अपकमिंग फिल्म का नाम, और इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग स्क्रीन पर्सनालिटीज एक यूनिक डायनामिक जरूर दिखाएंगी इन द फिल्म। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे श्रीलीला एंड इब्राहिम अली खान जो नजर आने वाले हैं इन दिस मूवी दिलेर, और इनकी फ्रेश पेयरिंग हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ मॉडर्न बॉलीवुड रोमांटिक ब्लॉकबस्टर। आगे बढ़ते हुए अबाउट द पेयरिंग दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, दैट इज अनीत पाड्डा एंड विशाल जेठवा जो शक्ति शालिनी में साथ नजर आएंगे, एंड देयर पेयरिंग प्रॉमिसेस बोथ फ्रेशनेस एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग क्रेडेंशियल्स। वैसे ये जितने भी एक्टर्स के नाम मैंने लिए हैं उन्होंने अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से प्रूव कर दिया है दैट दे हैव कम इनटू द इंडस्ट्री टू स्टे, एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई ये फ्रेश पेयरिंग्स जो हमें अलग अलग फिल्मों में नजर आने वाली है वो एक्चुअली बॉलीवुड की तरफ से मिलने वाले एंटरटेनमेंट के प्लैटर को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर पाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और अगर आप नए हैं ऑन माय शो देन यू वुड डेफिनेटली बी लाइक, अरे ये क्या खेलने की बात कर रही है लड़की। बट एक्चुअली दिस इज दिस फिल्मी गेम जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश करती हूँ। सो द थिंग इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल और फिर इस गेम की होती है शुरुआत। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अतुल जी, आर यू रेडी?
3: यस बिल्कुल
2: श्योर। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरा है, जो भी ला रहे हो दो लाना। राजपाल यादव का ये डायलॉग किस फिल्म में है?
3: चुपके चुपके, चुप चुप के, राइट।
2: हाँ, चुप चुप के में असली में डेफ एंड म्यूट कौन है?
3: करीना कपूर।
2: सर फिर गलत।
3: नहीं भाई, करीना कपूर, करीना कपूर।
2: करीना कपूर लॉयर किस फिल्म में बनी है?
3: ऐतराज।
2: ऐतराज में अक्षय कुमार को मोलेस्ट कौन करता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
2: प्रियंका चोपड़ा मॉडल किस फिल्म में बनी है?
3: फैशन।
2: फैशन में सेकेंड सुपर मॉडल कौन है?
3: कंगना रावत।
2: कंगना किस फिल्म में अकेले अपने हनीमून पे जाती हैं?
3: क्वीन। क्वीन
2: क्वीन में उनका इतना लाइफ किसने खराब कर दिया है?
3: राजकुमार राव ने।
2: वाह, राजकुमार राव की किस फिल्म में सरकटा है?
3: स्त्री टू।
2: वाह क्या बात, स्त्री टू में स्त्री कौन है?
3: श्रद्धा कपूर।
2: श्रद्धा कपूर को किस फिल्म में एक अल्कोहलिक से प्यार हो जाता है?
3: आशिकी टू।
2: कहीं पे रुक जाएंगे सर, सारा कुछ ही पता है आपको। माय गॉड, तू है

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड इट्स टाइम टू फाइंड द सेकंड मिर्ची फिल्म ची ऑफ द डे। सो द थिंग इज कि मैं आपको कॉल करके इस फिल्मी गेम की शुरुआत करती हूँ और आज हमने अतुल जी के साथ इस गेम को शुरू किया। हु गॉट स्टक एट अ पॉइंट, लेकिन उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है हिमांशु जी। आर यू रेडी सर?
3: यस आई एम।
0: ऑल राइट, उड़ता पंजाब में नशेड़ी आर्टिस्ट कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: बहुत बढ़िया, शाहिद कपूर की फिल्म जो एक ड्रिंक के नाम पे है,
3: कॉकटेल टू।
0: कॉकटेल टू में मामा माशू का कौन है?
3: कृति सैनन।
0: यस इट इज कृति सैनन। सरोगेट मदर किस फिल्म में बनी है?
3: मिनी।
0: आपकी जो मोहतरमा बैठ के आपको प्रॉम्प्ट दे रही है, आई लाइक इट। मिमी में कृति को सरोगेसी के लिए कौन मनाता है?
3: पंकज त्रिपाठी।
0: पंकज त्रिपाठी किस फिल्म में इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर बने हैं?
3: 83।
0: क्या बात है, 83 में कपिल देव का रोल किसने प्ले किया है?
3: रणवीर सिंह।
0: बहुत बढ़िया, रणवीर सिंह।

0: हेलो
1: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
0: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
0: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
0: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
1: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
0: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
1: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
0: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल,
0: से कम मुझे
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: जा कहाँ रहा है?
1: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
0: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
1: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
0: यार क्या बात कर रहा
1: है,
0: मतलब
1: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
0: चल
1: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
0: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
0: हेलो
1: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
0: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जिसके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है यार. लेकिन वी आर समवेयर डाउन द लाइन मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं. बट ऐसे में कॉन्वर्सेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझाने के लिए मैंने हिंदी सिनेमा का सहारा लिया है. एंड आई हैव गॉट यू सम 5 मूवीज जिनके ये 5 सीन इतने एपिक हैं दैट आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कॉन्वर्सेशन की क्यों इतनी जरूरत होती है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी वेक अप सिड, एंड उसमें आयशा और सिड की वो कॉन्वर्सेशन ऑन द टेरेस. अब बात करते हैं फिल्म गहराइयां के बारे में, जिसमें दीपिका पाडुकोन के कैरेक्टर अलीशा की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है विद हर फादर प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह. वेल, दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, जो अपनी बेटी को समझाता है कि वो किस तरीके से अपने इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं कर सकती. एंड दिस सीन इज ट्रूली रिमार्केबल इन द सेंस दैट वी आर ऑफन टोल्ड कि भाई दूसरे को फॉरगिव कर दो, बट हमें कोई ये नहीं समझाता कि अपने आप को फॉरगिव करना, माफ करना कितना ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर 3 पे बात करते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स से टिया और अर्जुन के उस कॉन्वर्सेशन की जो ग्रेवयार्ड में हुई थी. टिया प्लेड बाय आलिया भट्ट एंड अर्जुन यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा. सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है जहां दो लोग एक दूसरे से बिना किसी हेजिटेशन के बात कर रहे होते हैं, दैट टू इन अ ग्रेवयार्ड. सो ऑल इन ऑल द कंफर्ट एंड ऑनेस्टी दैट दीज टू पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर हैव इन दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज अमेजिंग. वेल, आपके लाइफ में कौन है वो इंसान जिससे आप ये अच्छी वाली कॉन्वर्सेशंस करते हो? डू लेट मी नो अबाउट दैट. हाँ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9930983983 नंबर है. Meanwhile, stay tuned to Mirchi with this ladki badi filmi jiska naam hai Shruti.

0: भाई इसके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्सेशंस की बात कर रही हूँ, बातचीत की बात।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई इस चीज के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ जिसके बिना आई जस्ट कांट सस्टेन। मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा भी आया होता है ना, तो आई एम लाइक कि भाई बातचीत करके खत्म करते हैं, ऐसे चुप रहेंगे ना कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू बिल्ड अप मोर एंगर फॉर ईच अदर। और अचानक से कॉन्वर्जेशन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशन इतने इम्पैक्टफुल लगे हैं मुझे दैट उनको डिस्कस करना मुझे जरूरी लगता है। इसलिए आज का पांच का पंच की लिस्ट इज डेडिकेटेड टू सच कॉन्वर्सेशंस। तो चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे बात करना चाहूंगी राणा और पीकू के कॉन्वर्सेशन की इन द मूवी पीकू। और इस मूवी से मेरा फेवरेट सीन इज जहां इन दोनों के बीच वो कॉन्वर्सेशन होती है ना, जब पीकू बोलती है विदाउट एनी फियर जो भी वो फील करती है अपने पेरेंट्स के बारे में आफ्टर एन एज दैट हाउ दे बिहेव लाइक चिल्ड्रन और किस तरीके से हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली स्टेड विद मी फॉर एवर। चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द मूवी डियर जिंदगी, जिसका एक पर्टिकुलर सीन है जहां जग प्लेड बाय शाहरुख खान, कायरा प्लेड बाय आलिया भट्ट को एक साइकिल राइड पे लेकर जाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर सीन में आलिया भट्ट पूछती है शाहरुख खान से कि भाई ये अचानक हम साइकिल से क्यों घूम रहे हैं। देन शाहरुख सेज दैट इट इज गुड टू ब्रेक पैटर्न्स। तो यहां हमें समझाया गया है किस तरीके से अपने लाइफ में जो एक सेट पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं उससे हट के भी चीजें करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑल्सो इसी पर्टिकुलर सीन में जग कायरा को सिखाता है कि भाई किस तरीके से उसको अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पे आके उसका कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना जरूरी है। And this goes for all of us out there, right? Well, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कोई conversational scene आप add in करना चाहो, then feel free to connect with me. Facebook या Instagram पे मैं मिलूंगी MIRCHISHRUTI, that is मिर्ची श्रुति के नाम से। और उसके अलावा WhatsApp number भी है bro, note कर लो, and it is 9930983983. Meanwhile, stay tuned to मिर्ची with this लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। नशा ये

0: This series is a roller coaster of manipulation.
1: OTT and chill.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति. एंड मैंने रिसेंटली देखी द पिरामिड स्कीम. देखो इस सीरीज को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड इट इज स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो, जिसमें परमवीर, चीमा, रणवीर, शोरे, शेखर, सुमन, अंजन श्रीवास्तव, अल्फिया जाफरी एंड विजय कुमार जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. सीरीज को डायरेक्ट किया है श्रेयांश पांडे एंड आशीष शुक्ला ने. एंड भाई कहानी एक एम्बिशियस येट इम्पेशेंट यंग मैन गोल्डी की है, जो अमीर बनने के चक्कर में एक पिरामिड मार्केटिंग बिजनेस में फंसता है और बस फंसता ही चला जाता है. बट द कोर ऑफ द सीरीज अकॉर्डिंग टू मी इज मैनिपुलेशन. जिस तरीके से हर दूसरा इंसान यहाँ किसी ना किसी को मैनिपुलेट करता दिख रहा है, वो फैमिली में हो या फिर बिजनेस में हो, इज समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली रिलेट विद. तो अगर आपको क्लोज टू रियलिटी टाइप का कॉन्टेंट पसंद है, देन दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच फॉर यू. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। या जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्स्डे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है, पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए, इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: Bank se bol le ho na, hamari nahi scheme aaye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: I'm sorry, नवे, I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कोकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
1: it's hot.

दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्योंकि जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद जीरो डिडक्शंस। एंड यू विल ऑल्सो गेट एन एडिशनल $5 पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओकट्री रोड इजलिन, और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मज़ा होता था। और मज़े की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतज़ार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना, वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हज़ारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के ज़माने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ज़िंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का गाना आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही कॉफी और अच्छी लगने लगती है, वही लॉन्ग ड्राइव छोटी लगने लगती है, और ट्रैफिक भी उतना इरिटेट नहीं करता। और बस उस इंसान की प्रेजेंस से लगता है कि तुम हो तो सब अच्छा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और शायद इसी एहसास को विशाल मिश्रा ने अपने गाने में तुम हो तो मैं इतनी खूबसूरती से महसूस करवाया है कि यार बस तुम हो तो ये कह देना ही काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी फीलिंग हम सब अपनी अपनी कहानी से पूरी कर ही लेते हैं। और अगर ऐसे गाने आपको भी सिर्फ सुनाई नहीं देते, महसूस भी होते हैं, तो बस 2 दिन बाकी है उन्हें लाइव महसूस करने के लिए। जी हाँ, विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट द पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को, यानी जून 26 को 8 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना, एटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी। और इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन। तो आप सब तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है और हर शो एक याद बन ही जाता है। सो टिकट बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि ज़्यादा बची नहीं है, जल्दी जल्दी अपनी टिकट बुक कर लीजिए विथ योर गैंग। क्योंकि यार इस बार सिर्फ कॉन्सर्ट देखने मत जाना, उस इंसान के साथ जाना जिसके साथ आपको भी दिल से लगे कि तुम हो तो सब अच्छा है। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस। और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नज़र थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रख कर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल इस थ्रो बैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
3: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूँ, तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है, तो
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर,
2: मुझे बात करने दे, पहले दो मिनट रुक जा,
4: तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनते ही लगता है कि ये तो ट्रेंड फॉलो करने नहीं आए हैं, ये अपना एक एहसास छोड़ने आए हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और कुछ ऐसा ही फील आता है एक दीवाने की दीवानियत टाइटल ट्रैक सुनते वक्त, क्योंकि आजकल हम गाने बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। रील देखी, हुक सुना, फिर नेक्स्ट स्वाइप कर लिया, लेकिन ये गाना ना उस रेस का हिस्सा नहीं लगता। ये आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। गाने की मेलोडी धीरे धीरे खुलती है और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, म्यूज़िक और वोकल्स दोनों सांस लेने की जगह देती है, और शायद इसीलिए गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और फिर आती है विशाल मिश्रा की आवाज़। यार उनकी आवाज़ की ना सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उनमें परफेक्शन से ज़्यादा इमोशन सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि वो गाना गा नहीं रहे हैं, वो उस एहसास को एक्चुअल में जी रहे हैं। हर लाइन में एक सिंसियरिटी होती है, एक रॉनेस होती है जो सीधा दिल तक पहुंचती है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए विशाल मिश्रा के गाने आज के म्यूज़िक लैंडस्केप में एकदम अलग नज़र आते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे ट्रैक्स बीट और ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब उनके गाने मेलेडी और इमोशन को सेंटर स्टेज बना देते हैं, और शायद यही खास बात है इस गाने की भी। तो गाना ख़त्म होने के बाद लिरिक्स या हुक से भी ज़्यादा ना उसका मूड साथ रह जाता है, और शायद इसी वजह से ये गाने सच्ची में जीत जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये गाना सुना है तो ज़रूर बताना कि किस चीज़ ने आपको ज़्यादा होल्ड किया है, मेलेडी, लिरिक्स या विशाल मिश्रा की वो दिल से निकली हुई आवाज़। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सुनते हैं दीवानियत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार, कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज़्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज़्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलेडी है जो यार सीधा दिल तक पहुँचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्ट बीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार, विशाल मिश्रा की मेलेडीज़ में ना एक खास बात ज़रूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते ज़रूर है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Murga, murga. La vieva la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: कंपनी ये कर सकती है
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट पकड़
6: तेरी मम्मी की जय

के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

कुछ चीजों के लिए ना लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए सिर्फ पागलपन। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चाहे किसी के लिए रात भर जगना हो, एक गाने को 100 बार रिपीट पे सुनना हो, कॉन्सर्ट के लिए मीलों ट्रैवल करना हो, या फिर हजारों लोगों के बीच खड़े होकर पूरी आवाज से लिरिक्स गाना हो, यार इन सब के लिए ना लॉजिक नहीं पागलपन तो होना चाहिए। और इसी एहसास को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं विशाल मिश्रा अपने पागलपन टूर 2026 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो दिल की बात दिल से करते हैं, जो म्यूजिक को सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं अपनी कहानी का हिस्सा मानते हैं। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो आप तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है, एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है, और शाम हमेशा एक्सपेक्टेशन से बड़ी होती है। तो तैयार हो जाइए न्यू जर्सी एक ऐसी म्यूजिकल नाइट के लिए जहाँ सुर भी होंगे, जज्बात भी होंगे, और थोड़ा सा वो खूबसूरत सा पागलपन भी होगा जो जिंदगी को यादगार बना देता है। विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को जून 26th 8 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना अटलांटिक सिटी। तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। और दोस्तों मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बस बताना है कि पागलपन भरा कैसे हुआ, ये जो गाना है विशाल मिश्रा का, ये कौन से मूवी का है। टेल मी ऑन इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @9033647244 और अपना नाम अपना नंबर ईमेल आईडी भेजना, क्योंकि जल्द ही विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं फॉर फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि कैसे हुआ, ये गाना कौन से मूवी का है, और तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जिसमें पागलपन सिर्फ देखा नहीं जाएगा, महसूस भी होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीधि चौहान की आवाज़ में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पर होता है? ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए, ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपने

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
4: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ, तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है, तो
5: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहाँ मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेस एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखें ना तो मजा आ जाता है। मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है। क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर, और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सा नए रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही कॉफी और अच्छी लगने लगती है, वही लॉन्ग ड्राइव छोटी लगने लगती है, और ट्रैफिक भी उतना इरिटेट नहीं करता। और बस उस इंसान की प्रेजेंस से लगता है कि तुम हो तो सब अच्छा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और शायद इसी एहसास को विशाल मिश्रा ने अपने गाने में तुम हो तो मैं इतनी खूबसूरती से महसूस करवाया है कि यार बस तुम हो तो ये कह देना ही काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी फीलिंग हम सब अपनी अपनी कहानी से पूरी कर ही लेते हैं। और अगर ऐसे गाने आपको भी सिर्फ सुनाई नहीं देते, महसूस भी होते हैं, तो बस 2 दिन बाकी है उन्हें लाइव महसूस करने के लिए। जी हाँ, विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट द पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को, यानी जून 26 को 8 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना, एटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी। और इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन। तो आप सब तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है और हर शो एक याद बन ही जाता है। सो टिकट बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि ज़्यादा बची नहीं है, जल्दी जल्दी अपने टिकट बुक कर लीजिए विथ योर गैंग। क्योंकि यार इस बार सिर्फ कॉन्सर्ट देखने मत जाना, उस इंसान के साथ जाना जिसके साथ आपको भी दिल से लगे कि तुम हो तो सब अच्छा है। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: क्या मैं आइस टी खा सकती हूँ प्लीज? लेमन आइस टी खाना है मुझे. आई एक्चुअली सेड दैट इज ट्रू एंड नॉट इवन लुकिंग एट अ गाय. ये मैंने एक लड़की को देखकर बोला था. सो मेरी बेस्टी और मैं एक नए कैफे गए और वहाँ पर मैंने एक लड़की देखी. शी वॉज कम्प्लीटली बोहिमियन. ओके, लंबे बाल थे उसके, उसने लाइक लो लाइन बन में टाई किए हुए थे. शी हैड लाइक लॉट्स ऑफ काजल इन हर आइज और उसने एक लूज कुर्ता पहना हुआ था. इतनी स्टनिंग लग रही थी ना वो, दैट आई जस्ट गॉट सो टंग टाइड. एंड मैंने, शी वॉज हेल्पिंग अराउंड द कैफे एंड लेटर आई रियलाइज दैट वो कैफे की को ओनर थी. एंड एट दैट डे शी वॉज डबलिंग अप एज द वेट स्टाफ ऑल्सो. सो जब मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे आइस टी चाहिए थी एंड आई एम नॉर्मली अ वेरी आर्टिक्युलर पर्सन, बट उसे देखे आई वॉज लाइक आइस टी खाना है मुझे, थोड़ा सा आइस टी खाने के लिए मिल सकता है. एंड आई मेड अ कम्प्लीट फूल ऑफ माई सेल्फ. बट यू नो वट हैपन एट द एंड ऑफ इट, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए. इस बात को 3 साल हो गए हैं. अब लिटरली हर वीकेंड आइदर आई एम एट हर प्लेस और शी इज एट माइन. And what I want to know from you is, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर, and it's not gender specific, you just became terribly tongue tied because that person was just, क्या ऑरा है यार, क्या वाइब चेक है. अगर ऐसा हुआ है, we totally have to compare notes. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. और आपकी और मेरी वाइब चेक तो पहले से ऑन है. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Nilçin. İskabana puskabana sakabana. Rabbana. Burga burga. Nafit bala burga.
1: Nilçin burga.
2: Hello.
3: Madam good evening.
2: Hi.
3: Bence bolle bana var yine izgi var ye. Madam taziz kime var ya kime. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं
4: से सॉरी
2: सॉरी ना मैं सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को
2: कुकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।